0: खुशहाली दराज होर मालूमात ले 111-111-425 ते हुणे कॉल करो या नेड़े ब्रांच दे नाल राबता करो।
1: शरायत ज़वाबत लागू है।
2: सब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं।
3: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
2: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है।
3: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
2: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
3: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ, इसमें 8 seats का ऑप्शन है।
2: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
3: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade Hybrid एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप। प्रीमियम हैज इट्स शेप।
4: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली।
5: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
6: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
5: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
6: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
5: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
0: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और मवेशी के लिए भी कर्ज की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से राब्ता करें।
1: शरायत ज़वाबत लागू है।
7: किसने कहा था?

0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
1: सोशल मीडिया सार्फीन खसूसन नौजवान नस्ल के लिए इंटरनेट के मनफी पहलुओं की आगाही इंतहाई जरूरी है। तोहीन रसालत, इस्लाम और रियासत मुखालिफ, फौश मवाद और झूठी खबरें इंटरनेट पर डालना या शेयर करना काबिल सजा जुर्म है। लिहाजा हर किस्म के गैर कानूनी मवाद को इंटरनेट और सोशल मीडिया पर शेयर करने से गुरेज करें। ऐसे गैर कानूनी मवाद को हटाने के लिए PTA और ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए NCCIA से रुजू करें। ये मुफाद आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फंड बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहाँ HBL।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: शौकत खानम, कराची की तकलीफ।
5: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
6: एंड ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।

0: झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली।
1: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
2: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
1: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
2: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
1: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
3: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रابطہ करें।
4: शराइत ज़वाबित लागू है।
5: सुनिए मालूमात आमा का प्रोग्राम पाक मिशन सोसाइटी के तआवुन से, जिसमें शामिल होंगी मुल्क की नामवर समाजी शख्सियात। तो सुनना मत भूलिएगा रोजाना सुबह 10:30 बजे सिर्फ FM 100 लाहौर और इस्लामाबाद स्टेशन से।
6: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
7: जहाँ 5 दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस, 5 दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
8: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फिकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर बट एज समवन हू केयर्स अबाउट योर फ्यूचर। We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
9: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
10: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
11: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
12: शौकत खानम, कराची की तकदीर।
13: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
6: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
14: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय शौकत खानम।

0: दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय
1: सर सब्स पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका आईफोन 17 प्रो मैक्स इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात
0: एंड
2: शौकत खानम कराची की तकलीफ।
3: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
0: एंड
4: वी आर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
0: एंड
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HPL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है।
0: एंड
6: ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
7: इट्स 10 AM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
8: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहाँ HBL। मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
9: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
8: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
10: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है।
11: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा, बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
4: मजीद मालूमात के लिए वी आर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप वी आर के व्हाट्सएप नंबर 0320-2758-492 पर भी रابطہ कर सकते हैं।
8: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
12: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिन सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबिन जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
13: HBL सरी बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, सरयालात और मवेशियों के लिए भी कर्ज की आसान सहूलत।

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।

0: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद यह आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है।
1: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा, बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
2: मजीद मालूम के लिए वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप वीआर के व्हाट्सएप नंबर 0320-2758-492 पर भी रब्ता कर सकते हैं।
3: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट। HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
5: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
4: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
6: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
7: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें इससे क्या।
4: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
6: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
7: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
6: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
4: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
7: और इस वजन की असल हकीकत को समझिए।
4: आइए वेट से आगे का सोचें।
8: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: सिवाज स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। अब आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और राब्ता करें 0300-555-0011 पर।
10: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
11: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
3: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
10: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
3: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
12: One Station 100 FM।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
13: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: HPL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, zara yalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
2: Kamethi chalana bhi ek alag hi tension hai. Kisi ka cash nahi hai. To kisi ka kal bhejta hu wala excuse aur kisi ko reminder par reminder chahiye. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
3: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जरायम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है।
6: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा, बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
7: मजीद मालूमात के लिए वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप वीआर के व्हाट्सएप नंबर 0320275849 पर भी राब्ता कर सकते हैं।

मुझे दर्द दिल की दवा नहीं, मुझे दर्द दिल के दलाइल दे। तेरा आना मुझ पे जरूरी था, तेरे आने के कुछ मराहिल थे। हम दोनों में काफी मसाइल थे, पर हम दोनों एक दूसरे के कायल थे। कभी मिला करते थे पहाड़ों पे, कभी मिला करते थे हम साहिल पे।

0: तेरे।
1: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
2: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है।
3: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा, बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
4: मजीद मालूमात के लिए VR टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप VR के व्हाट्सएप नंबर 0320275849 पर भी रابطہ कर सकते हैं।

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
2: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है. किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना.

काम से भी जाए कुर्बान हम 100 दफा जाना हिसाब तो कभी किया ही नहीं मेरा खुदा गवाह उसने मेरे गुनाहों का अब तक हिसाब लिया ही नहीं तोहफे तहाइफ देते ये बज़ाहिर पर दिल तो किसी ने दिया ही नहीं मेरी तेरे बगैर जो जिंदगी गुजरी वो काटी है उसे जिया तो नहीं किया ही नहीं मैंने तेरा ना होना कबूल कितने ही गिले और कितने ही शिकवे हम होंगे और कितने मजबूर मैंने आईने साफ किए जाने मंजर के चेहरे पे थी मेरी धूल और ये दोनों हाथ खाली आज भी मुझे कुछ हुआ ना हासिल।

0: This program was brought to you by HPL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, sarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat. It's 12 noon. This time check is brought to you by HPL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, sarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
1: Committee chalana bhi ek alag hi tension hai. Kisi ka cash nahi hai. तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना.
2: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो. ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है.
3: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा. बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी.
4: मजीद मालूमात के लिए VR टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं. आप VR के व्हाट्सएप नंबर 0320275849 पर भी रابطہ कर सकते हैं.

0: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
1: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है।
2: ना बार बार क्लिनिक जाने की झंझट और ना ज्यादा खर्चा, बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
3: मजीद मालूमात के लिए वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप विया के व्हाट्सएप नंबर 03202758492 पर भी रابطہ कर सकते हैं।
4: सिवाज स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना ना भूलिएगा। अब आप डॉक्टर जलील को YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और रابطہ करें 03005500011 पर।

0: It's 12:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix
1: laga aur bhul ja. कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है. किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना.
2: सुनिए मालूमाते आमा का प्रोग्राम पाक मिशन सोसाइटी के तावुन से, जिसमें शामिल होंगी मुल्क की नामवर समाजी शख्सियात. तो सुनना मत भूलिएगा रोजाना सुबह 10:30 बजे सिर्फ FM 100 लाहौर और इस्लामाबाद स्टेशन से.
3: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फ़िकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर बट एज समवन हू केयर्स अबाउट योर फ्यूचर. वी ऑल ड्रीम ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस बट ड्रग्स are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
0: Ye pegham hukumat-e-Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: HPL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, sarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
2: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखाधड़ी, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम हैं. इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
4: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो. ये एक आसान और सेफ माने अमल का तरीका है.
5: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा. बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी.
6: मजीद मालूमात के लिए वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं. आप वीआर के व्हाट्सएप नंबर 0320-2758-492 पर भी राब्ता कर सकते हैं.
0: This program is brought to you by
7: शौकत खानम. लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
8: शौकत खानम कराची की तकलीफ.
9: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
10: जुमातुल मुबारक की खुसूसी नशियात आप सुनेंगे सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी के तावन से.
11: कराची, लाहौर और रावलपिंडी इस्लामाबाद के तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम. अब आप सुनेंगे FM 100 पर मक्कतुल मुकर्रमा से नमाज़े जुमा.
12: अल्लाहु अकबरो.

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: FM
2: 100। इरशाद बारी ताला है, जानदारों में सबसे बदतर अल्लाह के नजदीक वो लोग हैं जो काफिर हैं, सो वो ईमान नहीं लाते। सूरह अनफाल।
1: FM
0: 100। सिवाज स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं, हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। अब आप डॉक्टर जलील को YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और रابطہ करें 03005500011 पर।

सुनिए मालूमात आमा का प्रोग्राम पाक मिशन सोसाइटी के तआवुन से, जिसमें शामिल होंगी मुल्क की नामवर समाजी शख्सियात। तो सुनना मत भूलिएगा रोजाना सुबह 10:30 बजे सिर्फ FM 100 लाहौर और इस्लामाबाद स्टेशन से।

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: Study in Malaysia Education Fair 19 सितंबर 2026 रमादा होटल लाहौर और 20 सितंबर 2026 पीसी होटल लाहौर में दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक मिलें बराहे रास मलेशियन यूनिवर्सिटियों के नुमाइंदों से हासिल करें फ्री एडमिशन प्रोसेस और ढेरों स्कॉलरशिप्स वो भी बगैर आईएलटीएस और बैंक स्टेटमेंट के तो देर किस बात की आज ही विजिट करें और अपना मुस्तकबिल महफूज बनाएं
2: खुशी नाल नचे हर पत्ता टैणी टैणी
3: ओ खैरे बरकतिया बड़ा मस्त होके गा रहे हैं
2: ओ सते खैरा ने HBL ज़रई बैंक की वजह तो फसल बहुत चंगी हो गई है
3: HBL ज़रई बैंक की वजह तो
2: ओए आहो बड़ी आसानी नाल ते बगैर किसी वड्डे रौले तो सही कर्जा जे मिल गया ट्रैक्टर भी ले लेता बी खाद भी चंगी आली
3: ते हुन मेनू पोल्ट्री फार्म वास्ते भी कर्जा मिल जाएगा
4: आहो पाकिस्तान दे सब तो वड्डे बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग दे कोले तुहाडे वास्ते पोल्ट्री फार्म मच्छी फार्म ज़रई ते जानवरां लई कर्जे दी सौखी सहूलत ते तुहाडी खुशहाली दराज होर मालूमात लई 111-111-425 ते हुणे कॉल करो या नेड़े ब्रांच दे नाल राबता करो
5: शरायत ज़वाबत लागू है
6: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं
7: ऑफ कोर्स इट्स द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड ग्रैंड बोल्ड एंड हार्ड टू मिस
6: बाहर से तो ग्रैंड है अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है
7: Exactly. Palisade Calligraphy is a true seven-seater with three usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
6: अच्छी है पर मुझे तो eight-seater चाहिए थी.
7: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ. इसमें eight seats का option है.
6: यानी family के लिए भी perfect और no compromise on looks. अब समझ आया? सब क्यों देख रहे थे?
7: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
8: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली
3: ओ खैर है बरकते बड़ा झूम झूम के गा रहा है
2: खैर है HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है
3: HBL ज़रई बैंक की वजह से
2: हाँ बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला
3: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा
4: जी हाँ पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म फिश फार्म ज़रई आलात और मवेशी के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें
5: शराय तो जवाबत लागू है
9: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी मजहबी फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी स्पैमिंग धोखा दही बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना इस सिलसिले में मदद तलब करना किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें
10: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया
11: मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट
12: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर तीन महीने के बाद यह आसान टीका लो ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है
13: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर तीन महीने तक की सेहत भरी छुट्टी
14: मजीद मालूमात के लिए वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं आप वीआर के व्हाट्सएप नंबर 0320-2758-492 पर भी राब्ता कर सकते हैं
11: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
15: शौकत खानम लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन
16: शौकत खानम कराची की तकलीफ
10: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں۔
11: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
16: خالص اجزا، بھروسے مند شفا، شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ۔
17: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
18: سر سبز پاکستان چیلنج کی آڈیو پر اپنی ویڈیو اپلوڈ کریں اور پائیے جیتنے کا موقع آئی فون 17 پرو میکس، الیکٹرک بائک اور شاندار قیمتی انعامات۔
10: اینڈ
19: شوکت خانم کراچی کی تکلیف،
10: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں۔ اینڈ
20: فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا۔
14: اینڈ وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں۔
10: اینڈ
21: پرانی گاڑی چھوڑو، نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو، تو ابھی اپنی قریبی ایچ پی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن، یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے۔
10: اینڈ
22: ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو، نریشز ہیئر نیچرلی۔

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: ईमेल हर अदारे के लिए एक इंतहाई अहम ज़राए इब्लाग है, लेकिन सिर्फ एक गलत क्लिक पूरे नेटवर्क को खतरे में डाल सकता है। साइबर मुजरिमों की जानिब से हुकूमती और निजी शोबे के मुलाज़मीन को मुसलसल फिशिंग ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। इनका क्या मकसद है? आपकी लॉगिन तफसीलात चोरी करना, सिस्टम्स को रैंसमवेयर से मुतासिर करना या गैर मजाज रसाई? महफूज रहने के लिए हमेशा ये बेहतरीन तरीके अपनाएं। हमेशा भेजने वाले की शनाख्त चेक करें, खसूसन एड्रेस। हमेशा अटैचमेंट की फाइल एक्सटेंशन चेक करें। pta.txt महफूज है, लेकिन pta.txt.exe नुकसानदेह साबित हो सकती है। अटैचमेंट खोलने से पहले जरूर स्कैन करें। ईमेल इस्तेमाल करने के बाद हमेशा लॉग आउट या साइन आउट करें। इन खतरनाक आदतों से हमेशा बचें। सरकारी ईमेल को जाती या गैर सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल न करें। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले असल URL जरूर चेक करें। क्लिक करने से पहले एक बार जरूर देखें। अपना ईमेल पासवर्ड किसी के साथ हरगिज शेयर न करें। पासवर्ड, OTP या हसास मालूमात ईमेल के जरिए कभी भी न भेजें। हैकर्स अक्सर फौरी कार्रवाई, धमकी, लालच या झूठे वार्निंग साइन जरूर देते हैं, ताकि आप घबराकर फौरन क्लिक कर दें। अगर कोई ईमेल बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा पुरकशिश और गैर मामूली तौर पर मशकूक लगे तो एक बार जरूर रुक जाएं और इसकी तस्दीक करें। फिशिंग ईमेल से कैसे बचें? अपने आप को और अपने अदारे को महफूज रखने के लिए धमकी आमेज या जज्बाती जुबान वाली ईमेल से मोहतात रहें। नामालूम या शॉर्ट लिंक्स पर हरगिज क्लिक ना करें। भेजने वाले का मुकम्मल ईमेल एड्रेस जरूर चेक करें। अटैचमेंट से खास तौर पर मोहतात रहें, खुसूसन exe.bat.vbs.msi और दीगर एग्जीक्यूटिवल फाइल से लोगो और ग्राफिक्स आसानी से जाली बनाए जा सकते हैं। इन पर अंधा एतमाद ना करें। किसी भी मशकूक ईमेल की फौरन अपने अदारे की IT टीम को इतला करें। आपकी होशियारी ही पहली दिफाई लाइन है। होशियार रहें, महफूज रहें। ये पैगाम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, PTA।
2: ये मुफादे आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।

0: स्टडी इन मलेशिया एजुकेशन फेयर 19 सितंबर 2026 रमादा होटल लाहौर और 20 सितंबर 2026 पीसी होटल लाहौर में दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक। मिलें बराहे रास मलेशियन यूनिवर्सिटियों के नुमाइंदों से, हासिल करें फ्री एडमिशन प्रोसेस और ढेरों स्कॉलरशिप्स, वो भी बगैर आईएलटीएस और बैंक स्टेटमेंट के। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें और अपना मुस्तकबिल महफूज बनाएं।
1: होने जा रहा है पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑटो शो 2026 18, 19 और 20 सितंबर को एक्सपो सेंटर लाहौर में, जरूर आइएगा।
2: खुशी नाल नचे हर पत्ता टैणी टैणी।
3: ओ खैर है बरकतिया, बड़ा मस्त होके गा रहे हैं।
2: ओ सते खैरा ने, HBL जरई बैंक की वजह तो फसल बहुत चंगी हो गई है।
3: HBL जरई बैंक की वजह तो?
2: ओए आहो, बड़ी आसानी नाल ते बगैर किसे वड्डे रौले तो सही कर्जा जे मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिता, बी खाद भी चंगी आली,
3: ते हुण मैनू पोल्ट्री फार्म वास्ते भी कर्जा मिल जाएगा।
2: आहो, पाकिस्तान दे सब तो वड्डे बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग दे कोले तुहाडे वास्ते पोल्ट्री फार्म, मच्छी फार्म, जरई ते जानवरां लई कर्जे दी सौखी सहूलत ते तुहाडी खुशहाली दराज। होर मालूमात लई 111-111-425 ते हुणे कॉल करो या नेड़े ब्रांच दे नाल राबता करो।
4: शरायत ज़वाबत लागू है।
5: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं।
6: ऑफ कोर्स, इट्स द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड, ग्रैंड, बोल्ड एंड हार्ड टू मिस।
7: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है।
6: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
7: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
6: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ, इसमें 8 seats का option है।
7: यानी family के लिए भी perfect और no compromise on looks। अब समझ आया, सब क्यों देख रहे थे?
6: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
8: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली।
3: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
2: खैर ही खैर है, HBL जरई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
3: HBL जरई बैंक की वजह से?
2: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
3: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
2: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरई आलात और मवेशी के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रابطہ करें।
4: शराइत ज़वाबत लागू है।
9: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है।
10: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा, बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
11: मजीद मालूमात के लिए VR टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप VR के व्हाट्सएप नंबर 0320-275-8492 पर भी रابطہ कर सकते हैं।
12: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
13: वन स्टेशन 100 FM।
12: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
14: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
15: शौकत खानम, कराची की तकदीर।
16: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
12: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
17: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।

तुम से तुम्हारे ख्वाब नहीं छीन सकता। आई नो व्हाट यू वांट, मगर मैं फौज नहीं छोड़ सकता, इसलिए कि फौज मेरे खून में शामिल है। अगर फौज छोड़ दूंगा तो मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकता।

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
2: शौकत खानम, कराची की तकलीफ।
3: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।

0: at 6 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: Hone ja raha hai Pakistan International Auto Show 2026 18, 19 aur 20 September ko Expo Center Lahore mein. Zarur aaiyega.
2: खुशी नाल नचे हर पत्ता टैणी टैणी
3: ओ खैरे बरकतिया बड़ा मस्त होके गा रहे हैं
2: ओ सते खैरा ने HBL जरई बैंक की वजह तो फसल बहुत चंगी हो गई है
3: HBL जरई बैंक की वजह तो
2: ओए आहो बड़ी आसानी नाल ते बगैर किसे वड्डे रौले तो सही कर्जा जे मिल गया ट्रैक्टर भी ले लेता बी खाद भी चंगी आली
3: ते हुण मैनू पोल्ट्री फार्म वास्ते भी कर्जा मिल जाएगा
2: आहो पाकिस्तान दे सब तो वड्डे बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग दे कोले तुहाडे वास्ते पोल्ट्री फार्म मच्छी फार्म जरई जानवरां लई कर्जे दी सौखी सहूलत ते तुहाडी खुशहाली दराज होर मालूमात लई 111-111-425 ते हुणे कॉल करो या नेड़े ब्रांच दे नाल राबता करो
4: शरायत ज़वाबत लागू है
5: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G
6: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डाली डाली
3: ओ खैर है बरकते बड़ा झूम झूम के गा रहा है
2: खैर है HBL जरई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है
3: HBL जरई बैंक की वजह से
2: हाँ बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरई कर्जा जो मिल गया ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला
3: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा
2: जी हाँ पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म फिश फार्म जरई आलात और मवेशी के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रابطہ करें
4: शराइत ज़वाबत लागू है
7: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं
8: ऑफ कोर्स इट्स द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड ग्रैंड बोल्ड एंड हार्ड टू मिस
9: बाहर से तो ग्रैंड है अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है
8: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
9: Achhi hai, par mujhe to 8-seater chahiye thi.
8: Ji, Begum Saiba, aapke liye Palisade Smart order kar deta hoon. Isme 8 seats ka option hai.
9: Yani family ke liye bhi perfect aur no compromise on looks. Ab samajh aaya, sab kyun dekh rahe the?
8: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
10: One station.
11: 100 FM.
12: Muft fund transfer. Muft checkbook. Muft online banking. Aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account. HBL Freedom Account ke saath. Muft fund transfer. Muft checkbook. Muft online banking. Aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account. जहाँ ख्वाब वहाँ HBL
13: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ यही नहीं फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G
12: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account जहां ख्वाब वहां HBL
14: शौकत खानम लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन
15: शौकत खानम कराची की तकनीक
16: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें
17: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैज कैश है ना
18: खालिस अज्जा भरोसेमंद शिफा श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा
10: This program is brought to you by
19: Try All New Vatika Shampoo. Nourishes hair naturally.
20: FM
21: 100. Assalamu alaikum Pakistan.
22: Azane Maghrib pesh ki ja rahi hai Sufi soap special quality ke taawun se.
23: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. لاہور اور اس کے مضافات میں نماز مغرب کا وقت ہو گیا ہے.

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: इरशादे बारी ताला है, और ये कुरान ऐसा नहीं कि अल्लाह के सिवा कोई इसको अपनी तरफ से बना लाए। हाँ, ये अल्लाह का कलाम है, जो किताबें इससे पहले की हैं उनकी तस्दीक करता है, और उन्हीं किताबों की इसमें तफसील है। इसमें कुछ शक नहीं कि ये रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल हुआ है। सूरह यूनुस।
2: FM 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100.

0: मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी, जो करना है कर बाले।
1: 100.1 FM, your location for maximum music.

0: होने जा रहा है पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑटो शो 2026 18, 19 और 20 सितंबर को एक्सपो सेंटर लाहौर में जरूर आइएगा।
1: खुशी नाल नचे हर पत्ता टैणी टैणी।
2: ओ खैर है बरकतिया, बड़ा मस्त होके गा रहे हैं।
1: ओ सते खैरा ने, HBL जरई बैंक की वजह तो फसल बहुत चंगी हो गई है।
2: HBL जरई बैंक की वजह तो?
1: ओए आहो, बड़ी आसानी नाल ते बगैर किसे वड्डे रौले तो सही कर्जा जे मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिता, बी खाद भी चंगी आली,
2: ते हुण मैनू पोल्ट्री फार्म वास्ते भी कर्जा मिल जाएगा।
1: आहो पाकिस्तान दे सब तो वड्डे बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग दे कोले तुहाडे वास्ते पोल्ट्री फार्म, मच्छी फार्म, जरई ते जानवर लई कर्जे दी सौखी सहूलत ते तुहाडी खुशहाली दराज। होर मालूमात लई 111-111-425 ते हुणे कॉल करो या नेड़े ब्रांच दे नाल राबता करो।
3: शरायत ज़वाबत लागू है।
4: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं वही लाइफ है, और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
5: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली।
2: ओ खैर है बरकत है, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
1: खैर ही खैर है, HBL जरई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
2: HBL जरई बैंक की वजह से?
1: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
2: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
1: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरई आलात और के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
3: शरायत ज़वाबत लागू है।
6: सिवाज स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। अब आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, और रब्ता करें 0300-555-0011 पर।
7: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
8: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं।
9: ऑफ कोर्स, इट्स द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड, ग्रैंड, बोल्ड एंड हार्ड टू मिस।
8: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है।
9: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
8: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
9: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ, इसमें 8 seats का option है।
8: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
9: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप। प्रीमियम हैज इट्स शेप।
7: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
10: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
11: शौकत खानम, कराची की तकनीक।
12: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
13: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
7: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
14: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का
15: कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
16: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
17: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
18: ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली।

0: बिजलियां हैं बिजलियां, हाय रे मेरी सेल्फियां.
1: There's only one station that keeps you moving all day long.
2: FM 100. 100.
3: खूब पहचान लो असरारों.

0: It's 6:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja,
1: Phoenix laga aur bhul ja. खुशी नाल नचे हर पत्ता टैणी टैणी।
2: ओ खैरे बरकतिया, बड़ा मस्त होके गा रहे हैं।
1: ओ सते खैरा ने, HBL जरई बैंक की वजह तो फसल बहुत चंगी हो गई है।
2: HBL जरई बैंक की वजह तो?
1: ओए आहो, बड़ी आसानी नाल ते बगैर किसे वड्डे रौले तो सही कर्जा जे मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिता, बी खाद भी चंगी आली,
2: ते हुण मैनू पोल्ट्री फार्म वास्ते भी कर्जा मिल जाएगा।
1: आहो, पाकिस्तान दे सब तो वड्डे बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग दे कोले तुहाडे वास्ते पोल्ट्री फार्म, मच्छी फार्म, जरई जानवरां लई कर्जे दी सौखी सहूलत ते तुहाडी खुशहाली दराज। होर मालूमात लई 1111 1 4 2 5 ते हुणे कॉल करो या नेड़े ब्रांच दे नाल राबता करो।
3: शरायत ज़वाबत लागू है।
4: सब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं।
5: ऑफ कोर्स, इट्स द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड, ग्रैंड, बोल्ड एंड हार्ड टू मिस।
4: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है।
5: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
4: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
5: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ, इसमें 8 seats का ऑप्शन है।
4: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
5: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर nearest Hyundai डीलरशिप। प्रीमियम हैज इट्स शेप।
6: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली।
2: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
1: खैर ही खैर है, HBL जरई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
2: HBL जरई बैंक की वजह से?
1: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
2: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
1: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरई आलात और मवेशी के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 1111 1 4 2 5 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रابطہ करें।
3: शरायत ज़वाबत लागू है।
7: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
8: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
9: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
10: शौकत खानम, कराची की तकनीक।
11: आज ही डोनेट करने के लिए 0800 11 555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
12: सुनिए मालूमाते आमा का प्रोग्राम पाक मिशन सोसाइटी के तआवुन से, जिसमें शामिल होंगी मुल्क की नामवर समाजी शख्सियात। तो सुनना मत भूलिएगा रोजाना सुबह 10:30 बजे सिर्फ FM 100 लाहौर और इस्लामाबाद स्टेशन से।
8: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
13: किसने कहा था पैसे बचा?
14: फिनिक्स

0: दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय
1: सर सब्स पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका आईफोन 17 प्रो मैक्स इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात
0: एंड
2: शौकत खानम कराची की तकलीफ।
3: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें
0: एंड
4: एंड वी आर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं
0: एंड
5: ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली।
6: इट्स 7 PM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: होने जा रहा है पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑटो शो 2026 18, 19 और 20 सितंबर को एक्सपो सेंटर लाहौर में, जरूर आइएगा।
8: खुशी नाल नचे हर पत्ता टैणी टैणी।
9: ओ खैर है बरकतिया, बड़ा मस्त होके गा रहे हैं।
8: ओ सते खैरा ने, HBL जरई बैंक की वजह तो फसल बहुत चंगी हो गई है।
9: HBL जरई बैंक की वजह तो?
8: ओए आहो, बड़ी आसानी नाल ते बगैर किसे वड्डे रौले तो सही कर्जा जे मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिता, बी खाद भी चंगी आली,
9: ते हुण मैनू पोल्ट्री फार्म वास्ते भी कर्जा मिल जाएगा।
8: आहो पाकिस्तान दे सब तो वड्डे बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग दे कोले, तुहाडे वास्ते पोल्ट्री फार्म, मच्छी फार्म, जरई जानवरां लई कर्जे दी सौखी सहूलत ते तुहाडी खुशहाली दराज। होर मालूमात लई 111-111-425 ते हुणे कॉल करो या नेड़े ब्रांच दे नाल राबता करो।
10: शरायत ज़वाबत लागू है।
11: जहाँ पाँच दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल पाँच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस, पाँच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
12: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली।
9: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
8: खैर ही खैर है, HBL जरई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
9: HBL जरई बैंक की वजह से?
8: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
9: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
8: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरई आलात और मवेशी के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से राब्ता करें।
10: शराइत ज़वाबत लागू है।
13: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
14: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
15: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैज कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैज कैश है ना।
14: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
16: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں۔
17: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
14: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
18: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن۔
19: شوکت خانم، کراچی کی تکلیف۔
3: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں۔
20: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شوابس انگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابس انگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال۔
6: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
8: ایچ پی ایل زرعی بینکنگ۔ کے پاس ہے پولٹری فارم، فش فارم، زرعی آلات اور مویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت۔
21: اینڈ پرانی گاڑی چھوڑو، نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو، تو ابھی اپنی قریبی ایچ پی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے۔

0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट। मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
1: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा, ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस कॉल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें। जय सार्फिन के लिए *275 हैश, जोंग सार्फिन के लिए *4004 हैश, यूफोन सार्फिन के लिए *6611 हैश और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342 हैश। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए।
2: ये मुफाद आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।

0: खुशी नाल नचे हर पत्ता टैणी टैणी।
1: ओ खैर है बरकतिया, बड़ा मस्त होके गा रहे हैं।
0: ओ सते खैरा ने, HBL जरई बैंक की वजह तो फसल बहुत चंगी हो गई है।
1: HBL जरई बैंक की वजह तो?
0: ओए आहो, बड़ी आसानी नाल ते बगैर किसी वड्डे रौले तो सही कर्जा जे मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिता, बी खाद भी चंगी आली,
1: ते हुण मैनू पोल्ट्री फार्म वास्ते भी कर्जा मिल जाएगा।
0: आहो, पाकिस्तान दे सब तो वड्डे बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग दे कोले तुहाडे वास्ते पोल्ट्री फार्म, मच्छी फार्म, जरई जानवरां लई कर्जे दी सौखी सहूलत ते तुहाडी खुशहाली दराज। होर मालूमात लई 111-111-425 ते हुणे कॉल करो या नेड़े ब्रांच दे नाल राबता करो।
2: शरायत ज़वाबत लागू है।
3: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस, पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
4: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली।
1: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
0: खैर ही खैर है, HBL जरई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
1: HBL जरई बैंक की वजह से?
0: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
1: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
0: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरई आलात और मवेशी के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
2: शराइत ज़वाबत लागू है।
5: सिवाज स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। अब आप डॉक्टर जलील को YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और रابطہ करें 0300-555-0011 पर।
6: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
7: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
6: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
8: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
9: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
8: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
10: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
9: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें इससे क्या।
8: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
10: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
9: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
10: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
8: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
9: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
8: आइए वेट से आगे का सोचें।
11: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
12: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
13: शौकत खानम, कराची की तकलीफ।
11: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
14: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
15: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
16: अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान।
17: आजान इशा पेश की जा रही है सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी के तावन से।
18: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 100 के सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लाहौर और उसके मजाफात में नमाज इशा का वक्त हो गया है।

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: FM 100.

0: FM 100. It's 7:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली,
3: ओ खैर है बरकते बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
4: खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
3: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
4: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
3: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
5: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और वैश्यों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
6: शराय तो जवाबत लागू है।
7: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
8: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
9: किसने कहा था पैसे बचा?

0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
1: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
3: शौकत खानम, कराची की तकलीफ।
4: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
5: खुशी नाल नचे हर पत्ता टैणी टैणी।
6: ओ खैरे बरकतिया, बड़ा मस्त होके गा रहे हैं।
5: ओ सत्ते खैरा ने, HBL जरई बैंक की वजह तो फसल बहुत चंगी हो गई है।
6: HBL जरई बैंक की वजह तो?
5: ओए आहो, बड़ी आसानी नाल ते बगैर किसे वड्डे रौले तो सही कर्जा जे मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिता, बी खाद भी चंगी आली,
6: ते हुण मैनू पोल्ट्री फार्म वास्ते भी कर्जा मिल जाएगा।
5: आहो, पाकिस्तान दे सब तो वड्डे बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग दे कोले तुहाडे वास्ते पोल्ट्री फार्म, मच्छी फार्म, जरई ते जनरल कर्जे दी सौखी सहूलत ते तुहाडी खुशहाली दराज। होर मालूमात लई 111111425 ते हुणे कॉल करो या नेड़े ब्रांच दे नाल राबता करो।
7: शरायत ज़वाबत लागू है।

0: It's 8 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: जहाँ पाँच दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है. और ऐसे ही स्पेशल पाँच के लिए जैज वी फाइव शेयरिंग पैकेजेस. पाँच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और एसएमएस की शेयरिंग. अपनी पसंद की वी फाइव ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G.
2: सब मुड़ के देख रहे हैं.
3: Of course, it's the all new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
4: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है.
3: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
4: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
3: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ. इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है.
4: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
3: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade Hybrid एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप. प्रीमियम हैज इट्स शेप.
5: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला. मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला. जैज 5G.

0: जहां पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस, पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
1: सब मुड़ के देख रहे हैं।
2: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
3: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है।
2: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
3: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
2: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ। इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है।
3: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
2: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
4: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
5: सिवाज स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। अब आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और रابطہ करें 0300 555 0011 पर।

0: यू बाय FPL सारे बैंकिंग के पास है। पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, सरयालात और मवेशियों के लिए भी कर्ज की आसान सहूलत।
1: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
2: सब मुड़ के देख रहे हैं।
3: ऑफ कोर्स, इट्स द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड, Grand, bold and hard to miss.
4: बाहर से तो grand है, अंदर भी premium feel आ रही है और space भी काफी है.
3: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
4: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
3: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ. इसमें 8 seats का option है.
4: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
3: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप। प्रीमियम हैज इट्स शेप।
5: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
6: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
7: शौकत खानम। लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन,
8: शौकत खानम कराची की तकनीक।
9: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।

0: जहां पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस, पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
1: सब मुड़ के देख रहे हैं।
2: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
3: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है।
2: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
3: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
2: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ। इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है।
3: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
2: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade Hybrid एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप। प्रीमियम हैज इट्स शेप।
4: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला। जैज 5G।
5: सिवाज स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। अब आप डॉक्टर जलील को YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और रब्ता करें 0300-555-0011 पर।
6: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
7: शौकत खानम। लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन,
8: शौकत खानम कराची की तकनीक।
9: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।

0: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं।
1: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
2: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है।
1: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
0: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
1: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ। इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है।
0: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
1: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
3: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: शौकत खानम। लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन, शौकत खानम कराची की तकनीक।
6: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।

0: मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी, जो करना है करवा ले।
1: 100.1 FM, your location for maximum music.

100.1 FM. Your location for maximum music.

विवाद स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। अब आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और रابطہ करें 0300 555 0011 पर।